नमः ॐ खं खशोल्काय सूर्यमूर्तये नमः ॐ ह्रां ह्रीं सः शिवसूर्याय नमः ॐ अं हृदयाय नमः ॐ अं अर्काय शिरसे नमः ॐ अं भूर्भुवःसुवरों ज्वालिनीशिखायै नमः ॐ ह्रूं कवचाय नमः ॐ भं भानुनेत्राभ्यां नमः ॐ रः अस्त्राय नमः ॐ अं दण्डिने नमः ॐ अं पिङ्गळाय नमः ॐ अं गणपतये नमः ॐ अं गुरुभ्यो नमः ॐ अं प्रभूतासनाय नमः ॐ अं विमलाय नमः ॐ अं साराय नमः ॐ अं आराध्याय नमः ॐ अं परमसुखाय नमः ॐ अं पद्मासनाय नमः ॐ अं कर्णिकायै नमः ॐ रां दीप्तायै नमः ॐ ह्रीं सूक्ष्मायै नमः ॐ रुं रुजायै नमः ॐ रूं भद्रायै नमः ॐ रें विभूत्यै नमः ॐ रैं विमलायै नमः ॐ रों अमोघायै नमः ॐ रौं विद्युतायै नमः ॐ रः सर्वतोमुख्यै नमः ॐ अं उषादेव्यै नमः ॐ अं प्रत्युषादेव्यै नमः ॐ सं सोमाय नमः ॐ बुं बुधाय नमः ॐ बृं बृहस्पतये नमः ॐ भं भार्गवाय नमः ॐ अं अङ्गारकाय नमः ॐ शं शनैश्चराय नमः ॐ रं राहवे नमः ॐ कं केतवे नमः ॐ अं तेजश्चण्डासनाय नमः ॐ अं तेजश्चण्डम्

शुं फट् पाशुपतास्त्राय नमः। ॐ हः अस्त्रद्वारपालाय नमः। ॐ हां वास्त्वधिपतये ब्रह्मणे नमः। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ हूं हां हं हां हूं आत्मने नमः। ॐ ह्लां निवृत्तिकलायै नमः। ॐ ह्वीं प्रतिष्ठाकलायै नमः। ॐ ह्रूं विद्याकलायै नमः। ॐ ह्रैं शान्तिकलायै नमः। ॐ हौं शान्त्यतीतकलायै नमः। ॐ हां अनन्ताय नमः। ॐ हां धर्माय नमः। ॐ हां ज्ञानाय नमः। ॐ हां वैराग्याय नमः। ॐ हां ऐश्वर्याय नमः। ॐ हां पद्माय नमः। ॐ हां गणपतये नमः। ॐ हां महालक्ष्म्यै नमः। ॐ हां सदाशिवगुरवे नमः। ॐ हां अनन्तगुरवे नमः। ॐ हां श्रीकण्ठगुरवे नमः। ॐ हां अम्बिकागुरवे नमः। ॐ हां स्कन्दगुरवे नमः। ॐ हां विष्णुगुरवे नमः। ॐ हां ब्रह्मगुरवे नमः। ॐ हां

शुंहुंफट् पाशुपतास्त्राय नमः। ॐ हः अस्त्रद्वारपालाय नमः। ॐ हां वास्त्वधिपतये ब्रह्मणे नमः। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ हूं हां हं हां हूं आत्मने नमः। ॐ ह्लां निवृत्तिकलायै नमः। ॐ ह्वीं प्रतिष्ठाकलायै नमः। ॐ ह्रूं विद्याकलायै नमः। ॐ ह्रैं शान्तिकलायै नमः। ॐ हौं शान्त्यै।